और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम पैदा किए कि उनमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर है।

0: और चार पायों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस खुदा का दिया हुआ रिज्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है।
1: ثمانية أزواج من الضأن اثنين

0: कहो कि लोगो आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को खुदा का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना बल्कि सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिज्क देते हैं और बेहयाई के काम जाहिर हों या पोशीदा उनके पास न फटकना और किसी जान वाले को जिसके कत्ल को खुदा ने हराम कर दिया है कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी जिनका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो।
1: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل

0: और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए, और माप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को तकलीफ नहीं देते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो, और खुदा के अहद को पूरा करो। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो।
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ।
0: और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम उसी पर चलना, और रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर खुदा के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का खुदा तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो।
1: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة।

हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें।

ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कुछ निशानियां आए। मगर जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की निशानियां आ जाएंगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं।

कहो क्या मैं खुदा के सिवा और परवरदिगार तलाश करूं, और वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा।

0: कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिष्ट से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सतर उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते हैं।
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: लोगों अपने परवरदिगार से आजजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता।
1: वला तुफसिदू फिल अर्ض बाद इस्लाह।

और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं।

हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ।

और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन से मट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस खुदा की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो।

0: और हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ।
1: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि कौम खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है तो तुम माप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है।

को फिर बुला भेजा। वो पूछना चाहता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं। इस दफा मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन इन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे, नतीजा खा कुछ भी हो। चुनाचे जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए और इसने सवाल किया, तो हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, इसके रसूल, इसकी रूह और इसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कवारी पाकदामन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलका किया था। इस पर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठाया और बोला, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तिनके के बराबर भी बढ़कर न थे। इस पर बतरीकों ने हू नहा की आवाज लगाई। नजाशी ने कहा, अगर जो तुम लोग हू नहा कहो। इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, जाओ तुम लोग मेरे कलमों में अमनो अमान से हो, जो तुम्हें गाली देगा इस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से किसी आदमी को सताऊं और इसके बदले मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए। इसके बाद इसने अपने हाशिया नशीनों से मुखातिब होकर कहा, इन दोनों को इनके हदिये वापस कर दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं इसकी राह में रिश्वत लूं। नेज अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल ना की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात मानूं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने इस वाक्य को बयान किया है, कहती हैं, इसके बाद वो दोनों अपने हदीये तोहफे लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के जेरे साया मुकीम रहे। ये इब्ने इसहाक की रिवायत है। दूसरे सीरत नगारों का बयान है कि नजाशी के दरबार में हजरत अमरु बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की हाजिरी जंगे बदर के बाद हुई थी। बाज लोगों ने तदबीक की ये सूरत बयान की है कि हजरत अमरु बिन आस नजाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए दो मरतबा गए थे, लेकिन जंगे बदर के बाद की हाजिरी के जुमन में हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु और नजाशी के दरमियान सवालों जवाब की जो तफसीलात बयान की जाती हैं वो तकरीबन वही हैं जो इब्ने इसहाक ने हिजरत हबशा के बाद की हाजिरी के सिलसिले में बयान की हैं। फिर इन सवालात के मजामीन से वाजे होता है कि नजाशी के पास ये मामला अभी पहली बार पेश हुआ था, इसलिए तरजीह इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक बार हुई थी और वो हिजरत हबशा के बाद थी। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और इनको समझ में आ गया कि वो अपने जज्बा अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में इन्होंने एक खौफनाक बात सोचना शुरू कर दी। दर हकीकत इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब इनके सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को तबलीग से बज़ोर ताकत रोक दें या फिर आपके वजूद का ही सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और मुशरिकीन के अजाइम के सामने आहिनी दीवार बने हुए थे। इसीलिए यही मुफीद समझा गया कि अबू तालिब से दो दो बातें हो जाएं। अबू तालिब को कुरैश की धमकी। इस तजवीज के बाद सरदारा ने कुरैश अबू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, ए अबू तालिब, आप हमारे अंदर सनो शर्फ और एजाज के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकें, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे आबाओ अजदाद को गालियां दी जाएं, हमारी अक्लो फहम को हमाकत जदा करार दिया जाए और हमारे खुदाओं की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। अबू तालिब पर इस जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ और इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह गए हैं कि अब मुझ पर और खुद अपने आप पर रहम करो और इस मामले में मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
3: एक नई पहचान, एक नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
5: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
5: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
4: जब मिलती है लगन,
5: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
5: तो बनती है
4: UCP की दुनिया।
5: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, अब बस, अब हमें और तुम्हें

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back, listeners. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं. इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर. जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली. तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट. और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज़ करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाई द इररेलेवेंट यूज ऑफ सर्विस. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस. तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं. और डिनाइल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है. एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाई कर दिया जाए. इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से. और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है. तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें. वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम हो सकता है.
2: जैसे जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे. तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है. तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ. तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं, मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है. तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है.
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है.
1: जी.
2: लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं. 6G, 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च कंडक्ट कर रही है. तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है. तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले कम अज़ कम 5 to 10 years जो हैं वो IoT में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होने के चांसेस हैं. और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है. जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है. और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज भी नए हैं. तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका यूजेज भी बढ़ रहा है साथ साथ. तो एक नया एनवायरनमेंट बनने के बहुत चांसेस हैं और नई एडवांसमेंट्स आपके सामने आने के चांसेस हैं, और फिर नई एप्लीकेशंस बिजनेस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी या बनाने का सोचेंगी या सोच रही होंगी डेफिनेटली, जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने ला के रखते
1: हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: जी मेरे लिए ऑनर की बात थी
1: सर, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी, उम्मीद है लिसनर्स को भी IoT के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: FM 92.6.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.2 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicbeat.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.musicfeed.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

0: 92.6.
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
2: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

6 बोरियत को भगा दो।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम नख़्ले अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिविटी आई भी होगी तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से ही हल किया होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से मुतल्लिक, उनके मसाइल और कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मोहम्मद वलीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वलीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अदर स्टफ।
3: बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो शोबाए सहाफत से है, और जो है वो मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2017 में मैंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत की वजह से, स्पोर्ट्स मैनशिप होने की वजह से और स्पोर्ट्स मैन होने की वजह से जो है मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया कि मुझे सहाफत में जाना चाहिए। तो फिर सहाफत चलती रही और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी साथ अटैच होती गईं, और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान चला गया। प्रोडक्शन भी की और खूब की पाकिस्तान के लिए। तो अब जो है वो आजकल जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी रुझान है और सहाफत की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।
2: वलीद, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वक्त हमारी सहाफत में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इस वक्त क्या सबसे बड़े मसाइल हैं?
3: बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो शायद बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हम लोगों ने वन साइडेड जर्नलिज्म कर दिया है कि क्रिकेट जिसको आती है, क्रिकेट के जिसको दो चार खिलाड़ियों का पता है वो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहने लग पड़ा है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होना जो है वो एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करना होता है, इंटरनेशनल गेम्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं, इसी तरह से हम जो हैं वो भी उन खिलाड़ियों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि आप किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आगे बात होती है, पाकिस्तान का इमेज होता है। तो उस इमेज को भी देखते हुए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो क्रिकेट देख के, क्रिकेट पढ़ के और क्रिकेट को समझ के सहाफत में आए हैं। तो ये जो है खेलों से ताल्लुक जो है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक जर्नलिस्ट का खेलों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस तरह से सहाफत कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना। तो खबर जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खबर ढूंढनी पड़ती है, और खासकर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो उनका इमेज है एक चीज। तो हमें उस चीज़ को बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निभाना होता है, उस खबर को भी आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। आजकल आपने मसाइल की बात की, तो सहाफत में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सहाफत में जो है वो कुछ इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं, कुछ हकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से भी मसाइल हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सहाफत में गलबा पा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मसाइल एज सच इस तरह से हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके सहाफत की जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पर पाबंदियां आजकल आयद करना शुरू कर दी गई हैं, उनको जो है वो मैचेस कवर करने से रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आजकल सहाफ़ियों को तो यही दरपेश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाबंदियाँ लग रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और उनके लिए मुज़ाहमत भी कर रहे हैं।
2: آپ نے بات کی تھی کہ اسپورٹس صحافت کے لیے ضروری ہے کہ صحافت پڑھی جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسپورٹس جرنلزم کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فزیکل ایجوکیشن یا اسپورٹس میں باقاعدہ تعلیم لے کے آئیں؟
3: بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس میں کہ کیا کھیلوں میں ان کا انٹرسٹ, ان کو کھلاڑی بھی ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے کھلاڑی ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کو ایز اے جرنلسٹ بھی جو ہے اس چیز کو سیکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کھلاڑی ہوں گے تو وہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ کو رولز پتا ہوں گے گیم کے, آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے آؤٹ ہیں, اتنی بال سائڈز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پتا ہوں گی. تو ایک کھلاڑی کے لیے صحافت میں جانا بھی ایک اعزاز کی بات ہے, اور جب تک ایک صحافی جو ہے وہ پراپر طریقے سے اسپورٹس کو دیکھے گا نہیں, اسپورٹس کو سمجھے گا نہیں, تو اس کو اس طرح سے صحافت آئے گی نہیں. آج کل ہمارے جرنلسٹ بھی جس کے پاس ایک کیمرے والا فون ہے اور ایک اچھا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اب خود کو صحافی کہنے لگ پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ولاگس کرتے ہیں, تجزیے دیتے ہیں اپنے, لیکن جو ایک کرکٹ ایکسپرٹ کا تجزیہ ہے, جو ایک اسپورٹس جرنلسٹ کا تجزیہ ہے, وہ ان سے بہت مختلف ہوتا ہے. یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا.
2: بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ اسپورٹ جرنلزم کے کیا مسائل ہیں. یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کا, سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
4: جدو راتی چن نکل دائے, جدو کالے پتل چھاندے نے, اس بے رنگی جی دنیا وچ کچھ لوگ نکل

0: कहीं भी 1% चीज भी नहीं नजर आई कि कोई रिपोर्टर उठ के किसी रिपोर्टर को हरास कर रहा है। अगर गुफ्तगू हो रही है फोन के ऊपर, खबर लेने के लिए हो रही है, ग्रुप्स हैं खबर लेने के लिए, ग्रुप्स में हैं, खबर आती है। हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें खवातीन ऐड हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ऐड हैं, तो हमने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कंप्लेन की हो कि यार ये मुझे हरासमेंट कर रहे हैं, ये मुझे हरास कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है, तो उसमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने हरास किया है, किसी ने इस तरह किया। मेरे ख्याल से काफी प्रोफेशनल्स हैं, और आगे भी आप देखें कि एक मच्योर जो है जर्नलिस्ट, एक मच्योर पर्सन होता है और उसको पता होता है कि अखलाकियात क्या है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है बहुत से लोगों के लिए, जो क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात सुनने में तो जरूर अच्छे लगते होंगे, लेकिन अभी तक होते या किसी से हमने नहीं सुना कि जी ये चीजें, ऑडियंस को बड़े अच्छे लगते होंगे कि जी अब मैंने अपनी बेटी को जी रिपोर्टिंग में नहीं भेजना क्योंकि इसमें हरेसमेंट होती है। ये आज की इस दुनिया में एक मिच्योर जो है वो दुनिया में एक जेंजी के दौर में आप ये कह रहे हैं कि जी हरेसमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल। आपकी माशाल्लाह खवातीन को हर चीज पता है और वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेती हैं अगर कोई उनको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व करे तो।
1: बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। हमने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। अब अगर हम बात करें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आ गए हैं और अब वो आके हर मैच के बाद अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो अगर आप एक हल्का सा कमेंट कर दें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि खिलाड़ी आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही जो है वो फसाद की जड़ है। मैं इस चीज पे जो है वो राय रखता हूँ ये वाली कि सोशल मीडिया ही फसाद की जड़ है। वो इसलिए भी, शायद ये मेरे खिलाफ भी जाए कि आज की दौर में आप डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हो के तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के और डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज ये है कि आप जब सोशल मीडिया का यूज गलत करेंगे ना तो बहुत नुकसान देगा, और हमारी 80% आवाम उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैंने ये अल्फाज कहना है, ये नहीं कहना, ये मेरे टीवी पे जाएगा, ये मेरी आवाम को जाना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस खिलाड़ी पे तबसरा कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के मैं जब तक तनकीद नहीं करूंगा, जब तक मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, मुझे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस रुझान की तरफ आ चुके हैं कि वो सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स बनाने के बाद वो बकायदा उसके ऊपर जो है वो तबसरे करते हैं कि पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को ये है, इस खिलाड़ी को ये, और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग चैनल पे बैठे हों तो शायद ये लोग उस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टीवी पे बैठ के तो बड़ी जिम्मेदाराना बात करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जिम्मेदाराना बात उनकी खत्म हो जाती है, वो व्यूअरशिप के लिए बात करने लग पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो टीवी पे बैठ के तो बड़े महज़ब तरीके से खिलाड़ियों को बैक भी कर रहे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उनके थंबनेल से आपको ये तासुर जा रहा होता है कि इसने तो इस वीडियो में उड़ा दिया इस खिलाड़ी को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका हमारे खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसके ऊपर बकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम जैसे सहाफ़ियों को मिला के ही चलाए जाते हैं, वो सहाफ़ी ही ट्रेंड्स चलाते हैं क्योंकि उनकी ट्विटर पे रीच होती है, तो वो सहाफ़ी बैठ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी मर्जी के खिलाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको हर खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को, इवन कि हमारी टीम सिलेक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हम अब बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाता है, वो नहीं बताता मीडिया को कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, खिलाड़ियों पे गलत चीज़ का तासुर जाएगा। इसकी लेटेस्ट जो अभी मिसाल वो ये है कि एक वाकया हुआ है इंग्लैंड में, और उस वाक्य के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वाक्य पे ये कहा कि हम उस वाक्य को लीगल असिस्टेंस देंगे अपने प्लेयर को, उसके बाद वो जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो की है और अपने सोशल मीडिया को तमाशा बनाने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जब तमाशा चीज का बनता है तो वो खिलाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होता है और एक इंस्टीट्यूट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक रोल तो है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें और पॉजिटिव ही रखें तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव भी होगा और हमारे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करेंगे। क्योंकि व्यूअरशिप जो है, हमने शायद अनफॉर्चुनेटली अपनी व्यूअरशिप को ये आदत डाल दी है कि हम तनकीद करेंगे तो आप हमें देखें, अगर हम तनकीद नहीं कर रहे तो आप हमें ना देखें। हमें क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट देना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ कॉन्टेंट नहीं देना चाहिए।
0: और इसी में फैन पेजेस को कैसे देखते हैं आप?
1: बिल्कुल, आपने फैन पेजेस की भी बात की है। अब तो फैन पेजेस जो है वो बहुत से फैंस बना लेते हैं और वह जुनून की हद तक होते हैं। तो वो बहुत से लोग जो होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो खुद भी फीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन फैन पेजेस को, उनके भाई बहनों दोस्तों ने बनाए होते हैं, फैमिली ने बनाए होते हैं, तो वो उनको फीड भी कर रहे होते हैं। जो खिलाड़ी खुद नहीं ना बात करना चाहता, वो उनका फैन पेज बात कर देता है और उसके बाद वो बात जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है और वो बात निकलते निकलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल से फैन पेजेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फैन पेजेस को क्रिकेटिंग नॉलेज पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट सेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स चाम के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जब तक आप क्रिकेटर्स के चाम में मुब्तला होंगे तो ना आप सहाफ़ी हैं, ना आप कोई एंकर पर्सन हैं, ना आप कोई ऐसी सोर्स हैं जिसपे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे तो उस खिलाड़ी की फेवर में बात करेंगे, आप उसके फैन बन के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी न्यूट्रल होता है, और उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना कि किसी प्लेयर की साइड लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, जो देख रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
0: हमने बात तो की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर मैं आपसे लास्ट पे कमेंट लेना चाहूँ कि आप क्या देखते हैं कि इसका हल क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का और जो प्रॉब्लम्स हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में।
1: बिल्कुल, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, जो कि हमारी बहुत सी खवातीन में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है। प्लेयर्स का चार्म जरूर मौजूद है, जब तक आप स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उस फील्ड में नहीं आ सकते। ये इसका एक प्रॉपर, आप देखें कि प्रॉपर सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। खैर, अब तो जर्नलिज्म भी बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं जर्नलिज्म में जाने के भी, और बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को चूज ही नहीं करते कि नहीं जर्नलिज्म तो एक लिमिटेड सोर्स है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खास तौर पे जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बीट है खवातीन के लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वैसे ही एक एनर्जेटिक है, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ इन खवातीन को लाना चाहिए और खवातीन को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फोकस करवाना चाहिए, ना कि दीगर बीट्स में जाएं या इन हाउस काम करें। आए आके काम करें, बहुत सी नौजवान खवातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाह रही हैं और वो काम भी कर रही हैं और हमसे शायद अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनका माइंड जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए। हमारी एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि हम जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाते हैं खवातीन खासकर, तो उनके माइंड सेट में आ जाता है कि मैं इस प्लेयर की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ, इस टीम की मीडिया मैनेजर लग जाऊँ। तो वो मीडिया मैनेजरशिप से निकल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए, ना कि आपको मीडिया मैनेजर और उस प्लेयर की प्रोफाइलिंग में लग जाना चाहिए, आपको उस फील्ड के साथ खेलना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच फिलीद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रॉब्लम्स को भी और उनके हल को भी, एंड यू आर डूइंग टू गुड, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCD Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
2: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुबारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता है इसलिए किराया कम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी अम्मी कहती है 1,000 रुपये चलो जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम घर की आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी लेते हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सर्कट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 1-5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुरबत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पाँव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेआत और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: दादा, वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल आज रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। जिंदगी के मामलात किसी भी किस्म के हों, जैसा कि राइड बुकिंग, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ऑनलाइन मेडिसन, चैटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, शॉपिंग, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, इंटरनेट की शमूलियत हर शोबे में लाजमी है। मगर कुछ सालों से IT की फील्ड में एक नई टर्म का जिक्र बहुत बढ़ चुका है। न सिर्फ जिक्र बढ़ चुका है बल्कि इंडस्ट्री और रिसर्च में इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, और वो टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आज हम रोशनी डालेंगे इस टर्म के टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है सर आबिद बशीर, जो कि UCP FOIT SE डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल लेक्चरर हैं और वायरलेस नेटवर्क्स एंड रेडियो सिस्टम्स की फील्ड में रिसर्च का तजर्बा रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि असल में ये है क्या और ये किस तरह दुनिया को बदल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: जी वालेकुम सलाम।
2: बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
3: जी आपका शुक्रिया, आपने मदद किया।
2: चलिए सर, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने मौजू की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि IoT, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं, असल में ये है क्या?
3: जी बुनियादी तौर पे इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ज़माने में हम जब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कंडक्ट करते थे, तो उसके हवाले से हमारे पास कुछ मोबाइल डिवाइसेज होती हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं, लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। तो जब भी आपने इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना है, डाटा शेयरिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटिंग डिवाइस होना ज़रूरी है। चाहे इट कुड बी अ मोबाइल, वो हो सकता है मोबाइल हो, वो आपके पास लैपटॉप हो, वो आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। अभी कुछ अरसे से आप एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कि होम ऑटोमेशन के हवाले से, लाइक मैं अगर घर पर नहीं हूँ तो मैं अपने CCTV कैमरा को देखना चाहता हूँ। तो जो कैमरा एक वो ऐसी एंटिटी है जो कि इंटरनेट डिवाइस, वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है सॉरी, लेकिन वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इंटरनेट पे कनेक्ट है।
2: जी।
3: इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैं घर में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी होम सिक्योरिटी को मैनेज करना चाहता हूँ, लाइक मेरी डोर्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, मेरा जो एयर कंडीशन का सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो मैं अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं और अपने मोबाइल के ज़रिए अपना किसी भी अपनी होम अप्लायंस को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, या किसी भी एंटिटी ऑफ माय होम को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहा हूं या मैनेज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए उस डिवाइस, उस होम एंटिटी का या अप्लायंस का इंटरनेट पर कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो जब ऐसी चीज़ें इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो एक ऐसी एंटिटीज़ बन जाती हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो कंप्यूटिंग डिवाइस ना होने के बावजूद कनेक्टेड है। दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो उनको हम थिंग्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो रेफर करते हैं, और ये एक मिला के एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
2: सर, क्या ये कहना सही है कि IoT नेटवर्क में हर डिवाइस एक कंप्यूटर का रोल अदा कर रही होती है?
3: बेसिकली हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अलावा इनको कंप्यूटर का रोल अदा करने वाली डिवाइस तो नहीं कह सकते
2: जी।
3: लेकिन जब वो मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलावा कोई भी डिवाइस, लाइक मेरा सेपरेट यूनिट है, इन्वर्टर है, मेरी फ्रिज है, मेरा माइक्रोवेव है, मेरी डोर है, या मेरी अलार्म क्लॉक है, या मेरा CCTV कैमरा है, ये कंप्यूटिंग डिवाइस का रोल अदा नहीं कर रही, मगर ये एक ऐसी एंटिटी के तौर पर बिहेव कर रही है जो इंटरनेट पर कनेक्ट हो गई है
2: जी।
3: और जब वो इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम उसको किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं।
2: Exactly.
3: जब वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं, तो एक लार्ज नेटवर्क बनता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और थिंग्स से मुराद अदर देन द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये डिवाइसेस हैं जो हमारी होम अप्लायंसेस भी हैं, या होम यूजेज के अंदर, या हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं वो यूज हो रही हैं।
2: सर, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना डिवाइस का जरूरी है, तो सर क्या हम किसी ऐसी डिवाइस को भी IoT नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं जो इंटरनेट इनेबल्ड ना हो?
3: نہیں, اس میں شرط یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی انیبلڈ, دیٹ شوڈ بی کیپیبل آف کہ اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں ان شارٹ ود دا انٹرنیٹ. اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی تو دیٹ مینس کہ وہ انٹرنیٹ آف تھنگس کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ تھنگس یا وہ انٹیٹیز جو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہی انٹرنیٹ آف تھنگس کا پارٹ نہیں ہے.
2: سر آپ نے کہا کہ سرویلنس کے لیے ہم یہ سارا نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں اور کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی چیزوں کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے, تو سر اس کی اگر کوریج کی بات کریں تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟
3: کوریج ایریا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے, جیسے آپ موبائل پہ کنیکٹڈ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس موبائل ڈیٹا آن ہے اور میں چل رہا ہوں, میں نے رائڈ کروائی ہے, میں یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہوں اور میرے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے,
2: جی,
3: تو اگین جب تک آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی نہ ہی آپ اپنی کمپیوٹنگ ڈیوائس کے ذریعے کسی بھی اور انٹیٹی کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی وہ انٹیٹی اگر انٹرنیٹ پہ کنیکٹڈ ہے تو وہ بھی اویلیبلٹی اپنی شو نہیں کرے گی. یہ ایسی ہے کہ میں اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے چیک کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر کا جو انٹرنیٹ ہے وہ آف ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ کیمراز تو چل رہے ہیں لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے بیکاز آف دا ان اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا موبائل ڈیٹا پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے لیکن ان دا اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ میں ان کو ویو نہیں کر پا رہا کیونکہ گھر کا انٹرنیٹ آف ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمراز گھر کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. تو دیٹ از دا پوائنٹ. اور میں اپنے اگر ایک اور ایگزامپل میں اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر کا اے سی آن چھوڑا ہوں فار ایگزامپل, اور میں اس کو آف کرنا, ایسا اکثر ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے, اور میں اس کو آف کرنا چاہتا ہوں تھرو مائی موبائل ڈیوائس, لیکن جو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, تو جو میرا جو انورٹر ہے یا میرا اے سی ہے وہ پھر اس کو میں آپریٹ نہیں کر سکتا. تو انٹرنیٹ انیبلڈ ہونا اور انٹرنیٹ پہ کنیکٹیویٹی ہونا, دیٹ از ویری اسینشل.
2: سر آئی او ٹی کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا کیا ہے اور کس طرح ہم ان کو کر سکتے ہیں؟
3: ایک جو دو ایگزامپلس میں نے آپ کو بیسٹ بتائی ہیں, نمبر ون از بیسیکلی کہ جو ہم سی سی ٹی وی کیمراز کو آپریٹ کر رہے ہیں,
2: جی,
3: اور ہوم آٹومیشن کے حوالے سے میں اپنی کوئی بھی اپلائنس ہے اس کو مینیج کرنا چاہ رہا ہوں. تو دنیا کیونکہ بہت تیزی سے آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے, ہوم آٹومیشن کی طرف, اور وہ ہوم آٹومیشن نہیں آفس آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے آفس کے جو روزمرہ امور ہیں ان کی آٹومیشن بھی ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو آٹومیٹ تھرو انٹرنیٹ, تو دیر از بیسیکلی اے پاسبلٹی کہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ ہے, وہ بیسک کانسیپٹ اس میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور جب بھی آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوم آٹومیشن پہ جائیں گے تو ہمیشہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی لاگو ہوگا اور اپلیکیبل ہوگا.
2: Listeners, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Welcome back listeners. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे IoT के बारे में, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानते हैं. इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और मजीद जानते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद बशीर. जी सर, अगर हम रिसर्च के हवाले से बात करें तो IoT में मजीद क्या काम हो सकता है?
2: रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन जो थ्रेट है हमेशा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट ही रहता है. सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट ऑफ द IoT बेसिकली. तो यहाँ पे अब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के हवाले से कई एल्गोरिथम्स हैं, कई अप्रोचेज हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं इन द मार्केट. और जो मैंने एक पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि हमें ये मेक श्योर करना है कि जो इंडिविजुअल आपकी IoT की सर्विस को यूज करना चाह रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, कोई आपकी आइडेंटिटी को मिस यूज तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए वी हैव टू डिनाई द इररिलेवेंट यूज ऑफ सर्विस. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस. तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट के अंदर डिनाइल ऑफ सर्विस जो है वो बेसिकली इसके ऊपर भी बच्चे काम कर सकते हैं. और डिनाइल ऑफ सर्विस दो किस्म का होता है. एक बंदा जो जनमन है और वो अपनी सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है IoT के एनवायरनमेंट में, तो उसको डिनाई कर दिया जाए. इसका मतलब किसी ने आपके नेटवर्क को हैक कर लिया अनऑथराइज्ड तरीके से. और दूसरा ये है कि आप उस बंदे को डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, डिनाई करें सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस के जरिए जो ऑथराइज्ड नहीं है. तो इसके लिए ऑलरेडी कई एल्गोरिथम्स हैं. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि वो ऑलरेडी अगर एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं, सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स या मैकेनिज्म्स, तो हम और मजीद क्या रिसर्च करें. वी हैव टू मेक देम मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि
1: सर इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं नेटवर्क्स को, इस बारे में भी काम हो सकता है.
2: जैसे जैसे आपका नेटवर्क का कवरेज एरिया एक्सपेंड होगा, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी बढ़ेंगे, यूजर्स इन्वॉल्व होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ेंगे. तो सिक्योरिटी एल्गोरिथम्स जो हैं या सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स जो हैं वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनको वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसमें रिसर्च के जरिए ही लाई जा सकती है. तो रिसर्चर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या लूप होल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो वो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को या प्राइवेसी मैकेनिज्म्स को जो है वो इंश्योर करने के लिए इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके. ताकि क्योंकि दुनिया कल को बहुत ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है और हर कोई होम ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली वो क्या चाहता है कि जी मैं इंटरनेट के जरिए हर काम अपना परफॉर्म कर सकूँ. तो इन द एंड उसके लिए क्या है कि ठीक है आप फैसिलिटी तो दे रहे हैं, मगर आपको सिक्योर और प्राइवेट या सेफ एनवायरनमेंट भी देना है. तो दैट इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है.
1: जी सर, अगर IoT के फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो इस पे मजीद काम हो सकता है, ये क्या स्कोप आपको लगता है इसका?
2: इस पे काम पहले भी हो रहा था, लेकिन इन द लास्ट 5 to 10 years अगर हम रिसर्च पेपर्स को चेक करें तो उसमें बहुत ज्यादा इसका जिक्र भी बढ़ा है और इस्तेमाल भी बढ़ा है.
1: जी.
2: लेकिन वो क्यों बढ़ा है? बिकॉज अगेन इंटरनेट की दुनिया बहुत जो है वो रैपिड हो गई है, स्पीड अप हो गई है, और अब हम 4G से 5G में जा रहे हैं. 6G, 7G पे भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रिसर्च कंडक्ट कर रही है. तो अगेन जब आप इस लेवल पे चले जाते हैं तो फिर अगेन इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट है और ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली फ्यूचर रिसर्च जो है या फ्यूचर ग्रोथ जो है इसकी बहुत फास्ट भी है और बहुत ब्राइट भी है. तो नेक्स्ट मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले कम अज़ कम 5 to 10 years जो हैं वो IoT में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स होने के चांसेस हैं. और खाली IoT को अगर हम सेपरेटली देखें तो वो एक इंडिविजुअल चीज़ है. जब हम IoT का इस्तेमाल मर्ज करते हैं विद अदर टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और इसके अलावा आपकी जो बाकी कंप्यूटर साइंस की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अगर हम ब्लेंड कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर एक नया हाइब्रिड मॉडल बन जाता है. और वो जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज भी नए हैं. तो फिर उस केस में जो है वो फिर डोमेन या स्कोप और बढ़ जाता है. तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर नई एडवांसमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं अगर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें IoT के साथ साथ बाकी टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट हैं, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, उनका यूजेज भी बढ़ रहा है साथ साथ, तो एक नया एनवायरनमेंट बनने के बहुत चांसेस हैं और नई एडवांसमेंट्स आपके सामने आने के चांसेस हैं, और फिर नई एप्लीकेशंस बिजनेस वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी या बनाने का सोचेंगी या सोच रही होंगी डेफिनेटली, जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मर्ज करके एक हाइब्रिड मॉडल आपके सामने ला के रखते हैं।
1: हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: जी, मेरे लिए ऑनर की बात थी
1: सर। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन थी। उम्मीद है लिसनर्स को भी IoT के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आज है महफिल दीद के काम के, शमा भी है और परवाना भी। मैम नूरजहां की खूबसूरत सी आवाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे, जो यकीनन आपको बेहद पसंद आया होगा। वैसे ना मौसीकी की यही तो एक बात होती है कि मौसीकी जो है हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमें ये राहत बख्शती है, हमारे दिलों को सुकून देती है। सो जनाब, मौसीकी से तो हमारा जो लिंक है वो बना ही रहेगा, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अपने बाकमाल सामीन से थोड़ी सी गुफ्तगु कर ली जाए। अब बाकमाल सामीन कौन है? जी बिल्कुल, बाकमाल सामीन वही हैं जो हमें सुन रहे हैं, वही हैं जिनकी समातों से हमारी आवाज़ टकरा रही है। और एक बात, आप बाकमाल इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है कि आप अच्छे कैसे हैं? आप अच्छे ऐसे हैं क्योंकि आपका दिल बहुत नर्म है, आपकी जुबान बहुत मीठी है और आपका दिमाग बहुत ठंडा है। फिर आप कह रहे होंगे ये तो ऐसी नामुमकिन बातों में से है जो मुमकिन कभी नहीं होता, क्योंकि कभी हमारा दिमाग गर्म हो जाता है तो कभी जुबान गर्मी हो जाती है और कभी दिल में रंजिशें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी आप बाकमाल बन सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है जनाब। और ये बात मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ताकि आप कोशिश जारी रखें, और कोशिश करने से कामयाबी मिल ही जाती है। और जब मैं बार बार आपको ये कहती रहूँगी ना, तो यकीन मानिए आपके दिलों पे और आपकी समातों पे, बल्कि आपके दिमाग में ये बात जो है वो रह जाएगी और एक दिन आप बाकमाल बन जाएंगे। और ये मैं चाहती हूँ, वैसे ना बाकमाल तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन आज मैं चाह रही थी कि कुछ गुफ्तगू की जाए एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद हम लोगों में से कोई ज़्यादा बात नहीं करता उन मामलों के बारे में। और वो मामला ऐसा है कि मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं भी काफ़ी बार ऐसी गलतियाँ कर देती हूँ। याद करना, यानी आज हम बात करेंगे, यादों की भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम जो अपनी गुफ्तगू का रुख है वो हम उम्मीद और अमन की तरफ भी लेके जाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं याद की। आपको किसी की याद आई है? अच्छा चले, मैं इसको आपके लिए आसान करती हूँ। याद का मतलब क्या होता है? क्या आपने कभी अपने उस दोस्त को याद किया जो शायद आपसे 6 साल पहले मिला था और अभी तक आपकी उससे मुलाकात नहीं हो पाई? जी जी, मुझे पता है कि आप उसे याद करते हैं, लेकिन आप उससे रابطہ करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्या दिल में कोई ऐसा खला है जो पूर्ण नहीं हो सकता? क्या आपकी जो रंजिशें हैं वो इतनी तवील हो गई हैं कि दोस्त को याद करना एक जुर्म बन गया है, एक सजा बन गई है? तो जनाब, ये रंजिशें मिटा दीजिए। पता है क्या, हम लोगों के दिल में गलत फहमी आ जाती है। हम कहते हैं कि मेरा दोस्त तो मुझे याद नहीं करता, मैं उसको याद क्यों करूं? ऐसा मत कीजिए। अगर आप याद कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दोस्ती का ही रिश्ता नहीं, बहुत से रिश्ते बचा लेंगे। इसलिए याद रखा करें। यादों के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट गजल की तरफ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप सुनिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी गुलबहार पाना की खूबसूरत सी आवाज़ में।

हमें जहां में कोई साहिब नजर ना मिला। बहुत ही खूबसूरत गजल थी और इसके अल्फाज तो ऐसे थे कि ये मेरे दिल पे सीधा असर कर गए हैं। और अल्फाज ही तो होते हैं, ये अल्फाज ही तो होते हैं जो हमारे दिल पे चिपक जाते हैं, ठाक करके लगते हैं। फिर जनाब, क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको साहिब नजर नहीं मिले? तो क्या किया जाए, इसका हल क्या है? आप मानते हैं ना कि हम हर मसाइल का जो है हल ढूंढते हैं, ये हमारी एक काविश होती है जो शायद हमारे अंदरूनी सुकून के लिए होती है। तो अंदरूनी सुकून के लिए हम साहिब नजर ही ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी साहिब नजर खुद को बनाया है अपने लिए? मुझे पता है कि आप कहेंगे बहुत ही अजीब बात कर रही है और ऐसी बात कर रही है जिसका वजूद ही नहीं है, इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना। लेकिन इस बात का वजूद है क्योंकि एक नज़र जो आपको सराह सकती है, जो आपकी तारीफ कर सकती है, वो आपकी अपनी भी तो हो सकती है। आप अपने आप को भी तो सराहा जा सकता है ना, मतलब खुद को भी तो सराहा जा सकता है, खुद से भी प्यार किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है खुद से प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, और जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो यकीन मानिए ना सिर्फ हम खुद से प्यार करते हैं बल्कि हम अपने उस प्यार को बांटते हैं, क्योंकि तब हमें खुद का पता चलता है। और जब हम खुद को जानते हैं तो यकीन मानिए हम अपने आप को बहुत हद तक सुधार लेते हैं। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी हर खुशी को, मतलब आप अपनी हर बुराई को छुपा दें, आप अपनी हर खामी को छुपा दें और आप कहें कि मैं सिर्फ अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नहीं, खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि अपनी अच्छाइयों का मवासना करना अपनी बुराइयों से, अपनी बुराइयों का मवासना करना अपनी अच्छाइयों से, और ये कोशिश करना, इस बात को मालूम करने की कोशिश करना कि आप में कौन सा ऐसा रुख है जिसे आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जिसे आपकी गुफ्तगू में नहीं होना चाहिए, कौन सा ऐसा चेहरा है आपका जो दूसरों के सामने नहीं जाना चाहिए, कौन सा आपका ऐसा रवैया है जिसकी वजह से दूसरे आपसे दूर होते हैं, आपको अपने उस रवैये से भी परहेज करना चाहिए। ये होता है खुद से प्यार करना। जब ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे कि याद। अब आप कहेंगे कि हम वापस आ चुके हैं जी, बिल्कुल, हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे हम मेन फोकस करेंगे वो याद है। यादों की गठरी हम अपने कांधे पे लादे हुए हैं। बहुत सी यादें हैं, हंसी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, ऐसी यादें हैं जिन्हें सोचकर हम बहुत खुश हो जाते हैं और इतने खुश होते हैं कि बस दिल करता है कि उसी खुशी में रहें। और कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहते, जिनके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन यादों को भुलाया नहीं जा सकता। आपको पता है आपके कंधों पे ये जो गठरी पड़ी हुई है ना यादों की, यही आगे बढ़ने का हौसला है। ये नाना हो तो आगे भी नहीं बढ़ा जाता। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और आपको एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाएं। और आज जो वो गज़ल हमारे सामने पेश कर रहे हैं ना, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। ये राज है कि वो आवाज़ किसकी है, आप सुनिए।

ये रबान नहीं यूँ लगता दिल मेरा। रेशमा जी की खूबसूरत सी आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे जो यकीनन यकीनन क्या, मैं इस बात पे 100% यकीन रखती हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि रेशमा जी की जो आवाज़ है वो सहरा की ऐसी खूबसूरत आवाज़ है जिसकी आवाज़ में दुख है। यानी कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी यूनिक होती हैं कि आप उनको सुनते हैं तो आप उनकी जो खूबसूरती है, उसकी जो दिलकशी है, उनकी आवाज़ में जो दर्द है, आप वो महसूस कर सकते हैं। और यही खासियत थी रेशमा जी में। 2013 में उनकी वफ़ात हुई थी। आज मैंने ये स्पेशल जो उनका ट्रैक था, जो कि बहुत ही मशहूर उनका ट्रैक है, उनकी याद में चलाया है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ख़ास है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़ास है, और पाकिस्तान की उन खूबसूरत आवाज़ों में से हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल, जैसे कि उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उनके बहुत से फेमस सॉन्ग्स हैं, जैसे कि लंबी जुदाई हो गया, गोरी ये मैं नहीं जाना परदेस हो गया, बहुत से ऐसे ट्रैक हैं जो कि हमारे बहुत पसंदीदा है, हमारे दिल के बहुत करीब है। और हाय और अब्बा दिल नहीं हो लगता मेरा, यकीन मानिए ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे मूड स्विंग्स आते हैं ना, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, तो ऐसी आवाज़ों को सुनने का दिल चाहता है। और यकीन कीजिए ये यादें, ये आवाज़ें हमें बहुत सुकून देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी अगर आपके एक ऐसे दोस्त की कॉल आ जाए जो बहुत सदियों पहले आपसे मिला हो, और फिर आपने ही उससे तकल्लुफ ना किया हो बात करने का, या उन जनाब ने ही तकल्लुफ ना किया हो, तो अगर आज उनकी कॉल आ जाए तो कितना अच्छा लगे ना, है ना। अच्छा, मुझे पता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे जनाब, ये भी तो सोचिए कि वो दोस्त भी शायद आपकी ही कॉल का मंतजर हो। मैंने बहुत मिन्नतें कर ली आपकी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप वाकई अपनी उन यादों को जो शायद आपने खुद से खुद दूर की हैं, उन्हें दोबारा से ले आए। अगर वो तकलीफ देती हैं तो रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके ना होने से आप नामुकम्मल हैं, तो उनका होना आपकी ज़िंदगी में बेहतर है। इसी तरह से तो यादें बनती हैं, इसी तरह से तो हम दूसरों के दिलों में घर कर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हम दूसरों को समझ नहीं पाते, हमें नहीं पता चलता कि दूसरा किस सिचुएशन में आके हमसे बात कर रहा है। अगर हमारे किसी कॉलीग ने, या हमारे साथ करने वाले, काम करने वाले किसी इंसान ने, या हमारे क्लास फेलो ने, या हमारी आज अम्मा बहुत गुस्सा थी, उन्होंने हम पे गुस्सा कर दिया, तो हम सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते, हम बात को समझ नहीं पाते, हम उन चीज़ों से हर्ट होने लग पड़ते हैं। तो जनाब, खुद को तकलीफ मत दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। जितना आप समझेंगे उतनी ही मुश्किलें, उतने ही दुख जो हैं वो हमारे से दूर भागते जाएंगे। पता है वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि ये तो बड़ा इंसान सोचने समझने वाला है, मैं तो नहीं जाता इसके पास। तो ऐसा कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब समझने की एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। आज सुबह पता है क्या हुआ? आज सुबह आप बैठे हुए थे तो आपके सामने एक इंसान, आप ऐसा कह लीजिए कि आपका एक दोस्त ही आ गया, बराए नाम का दोस्त। उसने आके आपसे कुछ ऐसी बातें की जो आपको अच्छी नहीं लगी, और आपने सोचा कि ये कैसा इंसान है, मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो ऐसा क्यों है? हो सकता है कि उस दिन उसके साथ कुछ अच्छा ना हो, और हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जो वाकई उसके लिए बेहतर ना हो, और उन सिचुएशंस में आके वो ऐसी बात कर रहा है। तो जनाब, समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर आप किसी को समझेंगे ना, कल आपको लोग समझेंगे, और ये बात बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप इस पे अमल कर लें। चले जनाब, बातें तो होती रहेंगी। अब ऐसा करते हैं कि खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो इसको सुनने के लिए बेकरार हूँ। आइए सुनते हैं, और ये नहीं बताएंगे कि ये किसकी आवाज़ में है। ये एक राज है जो तब खुलेगा जब आप इसे सुनेंगे।

जी जनाब, ये धुआं कहां से उठता है? दिल, दिल एक ऐसी चीज है जिसकी सुबह बहुत खूबसूरत होती है, और ये जो दिल होता है ना, ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समो लेता है, छुपा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुलाब होता है। एक गुलाब होता है ना, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो कशिश होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उसकी जो महक होती है, वो तब भी नहीं ख़त्म होती जब आप उसको अपने हाथ में मसल देते हैं। आप उसको मसल देते हैं, लेकिन उसकी जो खूबसूरती महक जो है ना, वो जो खूबसूरत सी महक होती है, वो आती रहती है। भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा दिल है। चाहे जितना भी टूटा हो, चाहे जितनी भी मुश्किलात से गुजरा हो, उसमें एक गोशा हमेशा रहता है, और वो होता है नरमी का, मोहब्बत का, प्यार का। तो अपनी उस गोशे को हमेशा संभाल के रखिएगा, कि वो बहुत कीमती है। तो जनाब, अब वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतज़ार हमें तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हमारा दिल कहता है कि वो लम्हा आए ही ना। लेकिन जिंदगी तो चलते रहने का नाम है। अगर खुदाफिस ना कहे जाए तो दोबारा आने का वादा कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे? जी जनाब, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसी बातें जो हमें आपसे करना ज़रूरी होती हैं, और वो इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप हमें याद रखें। तो आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, वो हम अम्न के बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। जैसा कि हम सबको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे दिल को सुकून दे, और पता है दिल को सुकून तब मिलता है जब सिर्फ और सिर्फ आपका दिल मुतमईन ना हो, बल्कि आपसे मुनसलिक लोगों का दिल भी मुतमईन हो, आपसे मुनसलिक जो रिश्ते हैं वो भी आपसे मुतमईन हो। लेकिन मानिए, हकीकी खुशी तो तभी होती है जब आपकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग खुश हैं, जब आपकी वजह से बहुत सारे लोग मुतमईन हैं, जब आपकी वजह से दूसरों की जिंदगियों में रोशनियां हैं, तभी सही खुशी, सही सुकून आपको मिल सकता है। सुकून इस चीज़ का नाम नहीं होता, या अमन इस चीज़ का नाम नहीं होता कि मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं और मैं। जनाब नहीं, ये लड़ाई तो मैं की है ही नहीं, ये लड़ाई तो है अपने आप को ख़त्म करने की। अच्छा, मैं जानती हूँ कि बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को ख़त्म करना, लेकिन इन बातों को समझने की ज़रूरत है। जब प्यार करते हैं ना, तो इसका मतलब आता है सबको साथ लेके चलना। जब अपने आप को ख़त्म करने का मतलब आता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को बिल्कुल साइड पे कर दूँ। नहीं जनाब, इसका मतलब ये होता है कि अपने साथ सबको लेके चलना, अपने साथ सबको लेके चलना। ऐसे ही आप भी सबको लेके चलें। और जनाब एक बात, कि हमेशा कोशिश करें कि आप गुलाब बन जाएं, और ये भी कोशिश करें कि आप कांटा ना बने। पता है क्या, अगर आप कांटा नहीं बनेंगे ना, तो बिलाखिर आप गुलाब बन जाएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: इस हुनर कदा में, इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।